खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझ जिम सही हा, हा। इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथे।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

गतिग्रह लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुरंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: आप बहुत मशहूर हैं कि आपने फिल्म लाइन में नए नए रिदम पेश किए।
1: अरे काहे की, लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा वेस्टर्नाइज म्यूजिक डायरेक्टर है और वेस्टर्न गाने देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने तुम्हारे साथ गाने किए उसमें कोई वेस्टर्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: लोग ये कहते हैं कि जहाँ गुलजार भाई और आप आते हैं, बर्मन साहब साथ में आते हैं, वहाँ गाना कुछ और ही बनता है।
1: वो क्यों ऐसे गाना बन जाते हैं वो मुझे भी नहीं मालूम, ना गुलजार को मालूम है, लेकिन कुछ हो जाता है।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

उलझन सच बन गया अगर उलझन फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझ दिम सही हा, हा। इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथे